0: का नशाला हेला नशाला
1: दिवेही एफएम के खुम में गटी रेगे फैशन विस दिवेही अमिल्ला रागे के लावे को

0: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
1: क्यों
0: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
1: क्या

0: Es un terengue jobón.
1: Ifge mi tia i hiddi wana tine mi alba badhas hawana har muhtar adi zuna kia fawa ahi awara ko mi lava mihar gadi mi wani egar gadi first minute hinga fa ituru message mi kial deni amade ke faratun dibu fawa message mi kial deni hi fm kudin kihine fm kudin hama barabar inge amade kine halu amade ke rani jahala di bala राजा को रानी से मिलावा मिहार उड़ेने बदिगेगा कक्का आहा मेंदुर रेडी कुरंग उड़े निदो रानी ओके हम मिलावा जहाल देने हैं नमस आई में फुरतो में जहाल देने गड़ीर के फेशुं कमुगवा अमिल रागु के लवा एफओ अमडे रिक्वेस्ट को फवाला वा जहाल देना
2: दिवे एफएम के कुम्मे गड़ीरे के फेशुं में दिवे अमिल रागे के लवे कुम

0: के मेगाहर्ट्ज़।
1: शोक देमिही मनालनी अनेकाविस शकीरा के लावे मी मियाहर के वर्ल्ड कप के लावे शकीरा आदि बर्न बॉय के डाई डाई मिलवामी जमानी फुटबॉल म्यूजिक बदलो फवागुए दक्कुए दे लावे इंग्रेसी स्पेनिश इटली फ्रेंच आदि जापानीज बस मिलवाए के हिमने मिलवा फार्मा को फवानी सोशल मीडिया के एल्गोरिदम तक फिते गोता अवस बदल तक टिकटॉक चैलेंज तक फसे हरिदम तक मी के हिमने मे फुटबॉल सगाफत की मिहार एवस बॉर्डर इन एचेकन साबित को देउ फेतुमे